रेन में जुगात गुरेन में सात गुरेन में श्री गुरुदेवन में आद गुरेन में जुगात गुरेन में सात गुरेन में श्री गुरुदेवन में इनहेल एक्सहेल. We're going to do some warm-ups before we start the set. So let's put our hands on our knees and begin some Sufi grinds. Inhaling forward, exhaling back.